वी थैंक के चक्रवर्ती सर, आरजे रत्नाकर सर, आई एस एन प्रसाद सर एंड सुंदर स्वामीनाथन सर फॉर गिविंग अवे द गिफ्ट्स. वी कंग्रेचुलेट द विनर्स एंड थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स. साईराम.

0: धन्योस्मि स्वामी, धन्योस्मि।
1: डिड यू सी दैट? इवन लॉर्ड कृष्णा हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट वर्शिपिंग एज पर द स्क्रिप्चर्स एंड इवेंचुअली हैड टू प्रे टू लॉर्ड गणेशा फॉर हेल्प। दिस ब्रिंग्स अस to the end of Ganesha Mahatmyam. Let us now do Kirtanam.

अब सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जित सपावा मिन भाणे के नाय करी जेती सिर ठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विचरतन जवाहर माणक जेख गुर की सिख सुनी गुराइक देह बुझाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीर्ति जगले जे तिस नजर ना आवई तां वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पुहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुखसा लाहण मंद सुनै जुग जुग तन भेद सुनै सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ग्यान सुनै अठ सठ का इसनान सुनै पड़ पड़ पावै मान सुनै लागै सही ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सिख पीर पातशाह सुनै अंधे पावै राहो सुनै हाथ होवै असगाहो नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम

आए मन जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पास्यों प्रगट जाए। मन मगन चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़ात्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सा

आथ आख रहे लवलाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करै वख्याण, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानवे आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे हे, ताख न सके के ई के, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिरगा वारांगा वार, सो दर केहा सो कर केहा, जित पै सर्व समाले, वाजे नादा नेका संखा, केते वावन हारे, केते राग परिसो कहियन, केते गावन हारे, गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गाव है चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गाव है इंद इंद आसन बैठे देवत्यां दर नाले, गाव है सिर समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गाव है वीर करारे, गावन पंडित पन्न रखी सर जो युग वेदा नाले, गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अठसा तीर्थ नाले, गाव है जोत महाबल सूरा, गाव है खानी चारे, गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना यावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदासा साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरन पर झोली, ध्यान की करै बिभूत, किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाहत, जुजगु एको वेस पोत गया दया पंडारण, कड़कड़ वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिदरा साध, संजोग विजोग दो कार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाहत, जुजगु एको वेस एका माई जुगत व्याई, तन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी,

आद अनिला नादानाथ जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय पंडहार जुग छपाया सोए का वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तसै आदेश आद अनिला नादानाथ जुग जुग एको वेश। एक दू जीभौ लख हो हे लख हो वै लख वीस, लख लख गिड़ा आखिया एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होया अकीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक तुम नीच ना कोए, राती रुती थती वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती था ब्रखी तरमसाल, तिस विच जी जूत के रंग तिनके नामा ने का अनंत। करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जा पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अख हो कर्म। केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश, केते ब्रह्मे घड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद, केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती शिव केते, नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद को डानंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घड़त घड़ी है बहुतानूप। ता तियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कह पिछा पिछताए। तिथै घड़ियाए सुरतमत मन बुद्ध, तिथै घड़ियाए सुरासदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै योद महाबल सूर तिनमै राम रहा भरपूर।

वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोक, करह आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै तंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खल्ला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिन को नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पमन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत।